0: नाङथाङ नाम्लो लिजाउ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हो नि हालले छ अनुगमन दुने व्यवस्था चौसङ्गी दुए
1: गेछो छानेला खोलेल चाउसी फोरिए हरिदे तरिन गाई गेजम हेके लाइजु अब नजिरे बने गेम येल गेजम हेके नलाए औलेम लायो के नाइए
0: वन जङ्गल छ जुलिसी हेङ बारी ल बाली नाली चिउला चिउली यात्रा रस चाउसो छिमी ने चाउसो सैरेके खेले या
1: वन जङ्गल मेला दुके माइए मेला दिकी नि पार सोना खरना लार मिली देखो नै सानो छ मे के छ ये
0: बतास उचली जु बेला त हिजिन के कोटल मे के सतांगी नि हेन ओखेम छिन्नी ने चाउस के छ या
1: ने लागि नि निताई के मने के बसिए सोनो अरुले मने के बस या
0: के छ थामला पोयाल ने लागि के छ कि नि के छ त ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका भूमि कार्यालय ल खबर गिरिए
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा।